श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिय घर नान दावे ताई, सब ताई होई सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब ताई होई सहाय। दसवां पातशाह यदि जो तन तन तन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते पाठ दीदार तत्यांतर के, खास जी बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया, चालिया मुक्तिया हटिया जपिया तपिया, जिन्हानू नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई देख बाई देखे अंडित कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा त्यंतर के, बोलो जी सतनाम। जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस टिठे, बन बन कटाए कोपरिया लुहाइया, चरकरिया ते चरे तन आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म ना ही हारिया, सिक्खी केसा

पंत की जीत। श्री साहेब जी सहाय, कासे जी के बोल वाले, बोलो जी सतनाम। सिखानु सिखी दान, केशदान रहतान, विवेक दान, विसादान, परोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे।

काल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मोहन नीतन आवे हावे हर गजर बासत आवरण कीने मोहन नीतन आवे हावे हर गजर बसत अवकरण उडिनी उडिनी उडिनी तब कर आवे की राव शरण सुहागना चरण शीस दर लालन मोहे मिलाव हो कब कर आवे रे रे सुन सुन

0: सुंदरे प्यार
1: अमृत वेल सच नाव रियाए विचार
0: कर्मियावे अपरा नदरी मोह द्वार
1: नानक वे जानिए सब आपे सचियार
0: नपि न जाए कि तना होए
1: आपे आपन अंचन सोए
0: जिनसे भी अतिम पाया मन
1: नानक काव्य गुने निधान
0: गावे सुनी मरवा क्या बाव
1: दुपर सुखर ले जाए
0: गुरुमुख नादान गुरुमुख वेदान गुरुमुख वे रसमाय
1: कुदीशर कुकोर परमा कुर पर्वती माय
0: के हो जाना आका नाही गहन कत न जाए
1: कराख दे बुझाए
0: सब न जिया गए किताता सोमे वसर न जाए
1: तीरत नावे जेतिस पावा विंबने की नाय करी
0: जेतिस से तुपाई बेका विंखे में मिले ले
1: मफे चतन जवाहर मानक जे इकर की सिक्षनी
0: गुरे के दे बुझाए
1: सब न जिया कह एक दाता सोमे विसर न जाए
0: ते चिपचरे आर जा और न सुनी होए
1: न वाखन विच जानिए ना चले सब कोई
0: चंगा नाव रखाए के जस किर चकले
1: चेचिस नर न आवी तब न पूछे के
0: पिता अमृत की जाका दोषी दोस्त्रे
1: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे
0: तेह कोई न सुजे जतिस गुण कोई करे
1: सुनिए सिद्ध पिलसनाथ
0: सुनिए थर थर लकार
1: सुनिए टीप लभता
0: सुनिए तकी काल
1: नानक भगता सदा विकास
0: सुनिए दुख आपका नाश
1: सुनिए ईश्वर बर्म इंद
0: सुनिए मोतला मंद
1: सुनिए जोग जुगतन वेद
0: सुनिए शत सिमृत वेद
1: नानक भगता सदा विकास
0: सुनिए दुख आपका नाश
1: सुनिए सत संतोखियान
0: सुनिए असत का इश्नान
1: सुनिए पर पर पावे मन
0: सुनिए लगे सहेश ध्यान
1: नानक भगता सदा विकास
0: सुनिए दुपाप का नाम
1: सुनिए सदा घना के गम
0: सुनिए शीते पतिशाओ
1: सुनिए अंधे पावे राहो
0: सुनिए हाथों वे आसकाओ
1: नानक भगता सदा विकास
0: सुनिए
1: सुनिए दुख पाप का नाश मने की गत कहे न जाए
0: जे को कहे कछे पछताए
1: खग कलम न लिख न हाय
0: मने खव करम विचार
1: ऐसा ना नरंजन होए
0: जे को मन जने मन कोए
1: मने सर होवे मन बुद्ध
0: मने सगव न राखी सिद्ध
1: मने मोय चक्तन न खाए ऐसा नाम नरंजन होए
0: जे को मन जाने मन कोए
1: मने मारक तक न पाए
0: मने पत्सियो पर गजाए
1: मने मग न चले पाए
0: मने धर्म सती संबंध
1: ऐसा नाम नरंजन होए
0: जे को मन जाने मन कोए
1: मने पावे मुक्त हुआ
0: मने परवारे सदार
1: मने तने तने गर्षिक
0: मने नानक हवे नविक
1: ऐसा नाम नरंजन होए
0: जे को मन जन मन कोए
1: पंचवे वान पंचवे दान
0: पंचे पावे तिर के मान
1: पंचे सोए दल जन
0: पंचे का गुरे ध्यान
1: जे को कहे करे विचार
0: करते ही करने ना ये समार
1: दम धरम दिया का पुत
0: संतोप धरम क्या की सोच
1: जे को बुझे हुए सच्यार
0: ताले ऊपर के तवार
1: दोती हो परे हो हर
0: तीसे वर करे कमजोर
1: ची जा ट्रंगा के नाम
0: सवन लिखिया बुरी कलाम
1: ए हो लेखा लिख जाने कोई
0: लेखा लिखिया
1: के ता होए के ता चान स्वाली और रूप
0: के ते ता चने कुंकूत
1: की ते बसाओ एक कबाओ
0: इस्ते होए लखतरियाओ
1: कुछ कमन कहा विचार
0: परिन जावा एक बार
1: ज्योतिर बामे साई बलिकार
0: तू सदा सलामन निरंकार
1: असंख जप असंख बाओ
0: असंख पूछ असंख तपताओ
1: असंख ग्रां